भरोसा के घर आगे नेता उबा में था बेलिसा बेच चेबी ये बे नगी बेतंग तर गीत सबरा वे तापते सब के इंजीनियरिंग से बता ली तापते नवे यगी को तसेता को न्योरो का न्यास से की किसी जैने नेते के नीता बेलि भूता गेंगे के पगल सगो लगर तमा गेंगे एंगे प्रो कोरिक की मुआगित काबले तुंड वर्ड चेताब चगी को सिरता अब्राम तुए माते गेते आकर रोडा चेपसगिरा ओसो थियोताब क्रिस्टोफा ये बे आगा Ago siyetabe filista yebei. Tup chetabe Alexander Tuwei Wilson negi gosirta Samuel negi gosirta. Tup chetabe Alexander Tuwei negi gosirta Wilson Samuel negi gosirta Grace Joel Philip Edna Simeon Paul Elijah Rachel David negi gosirta Joseph Ludia Obot. Ludia Obot Evalin Negi Gosirta Chebochog Negi Gosirta Alice Raheli Agne Gosirta Richard